0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
0: Baby, don't you ain't dream. Don't be small.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो
2: Doctor AZ sings it.
3: Zanny production.